0: 库拉这边叫了暂停，他是在10-6领先的情况下被追到了10-8。因为这一轮的赛制呢，还是5局3胜制啊。
1: मैं वही सोच रहा हूँ बैक नहीं डाल सकता उसके फोर रन पे शॉट डाल पाऊंगा डाल सकती यहाँ पे
0: मतलब सही जान थी ये कुछ लाइक तुम चाल ये से हम छो लू ये मैं उन्हें मकाओ
1: हाँ शॉट डालो अगर मारेगी भी तो बैक एंड ही मारेगी फिर आप लॉन्ग भी कर सकते हो अगर हाफ लॉन्ग भी निकला तो लेकिन जब मारने जा रहे हो थोड़ा वेट करो थोड़ा अच्छा रब मतलब अच्छा एक्सेलरेशन दो उस बॉल और कंटिन्यू आता रहेगा बॉल आता रहेगा रेडी रहना है आपको इस चीज़ के लिए ठीक है कम ऑन ये पॉइंट चाहिए कम ऑन